0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

तेरा ही अंश हूं, ना जाने कितने जन्मों से अलग हुआ बिछड़ गया हूं, भटक रहा हूं। तुम चाहे माया के कितने खिलौने मुझे दो,

0: व्यक्ति उसका आनंद तभी आता है जब माँ उसे अपनी गोद में ले लेती है। इसी प्रकार ये तुम माया के प्रपंच के कितने भी खिलौने मेरे सामने डालो, इनसे खेलकर खेल खेलकर अब उकता चुका हूँ प्यारे। अब चाहता यही हूँ कि जब से तुमसे बिछड़ा हुआ हूँ, अब मिलन भी ऐसा हो जितने जन्म तुमसे बिछड़ा हो, उससे कहीं दूने चौगेरे जन्म तक तेरा मेरा नित्य मिलन है। इसलिए मेरी प्रार्थना क्या है,
1: रेडियो अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

ये विषम परिस्थितियां तो देखो, वैसे भी इस जमाने में किसी का प्यार किसी को रास नहीं आता, और इस पर भी ये काली घनघोर घटाओं युक्त रात, प्यारे मेरे जीवन में कब सुबह होगी और तभी होगी।

क्या जानते नहीं प्यार करना किसी मूर्खता या बेवकूफी से कम नहीं। अरे बावला मैं नहीं तू, अब है तो है, इसमें रोकने की चेष्टा क्यों करना।

कहते हैं सामिप्य, नियरनेस, चाहे पास आकर ना मिले हो, ये मतलब जिस्मानी मिलन नहीं, लेकिन कौन सा क्षण है जिस क्षण वह एक दूसरे के सामने नहीं।

बगावत, जमाने की नजर में मेरी हिमाकत, तुमसे मिलने की हसरत। क्या कुछ भी नहीं इसके मायने रखते, यदि तुम भी जानना चाहते हो कि इसके कोई मीनिंग है, अर्थ है, मतलब है, तो फिर काश कैसे भी अपनी एक और मुलाकात हो, काश कैसे भी अपनी एक और मुलाकात हो, फिर वही बात हो, फिर वही रात हो, फिर वही बात हो, फिर वही रात हो। यदि तुम भी वही बात और उस रात को अंजाम देना चाहते हो तो

कितना भी मांगो कोई जवाब मिलता ही नहीं किसी के पास, क्यों मेरे प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं, मेरी प्यास की सामग्री किसी के पास है ही नहीं।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स। मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: वो मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: वो
5: अनि मलाई

0: मैं और मेरी कहानी।
1: ये क्या सिक्योरिटी बुझती
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है।
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: Four, eight.

फूलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ,

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नंबर 13 न्यू रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
1: ¶¶

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: આવેલ સૂચ્ય પાટી
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820776888।
2: जे जे ज्वेलर्स, शुद्धताको पहिचान।
3: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
4: क्या?
3: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता।
4: मैं क्यों लिखूंगी?
3: तो ये सारे कार्ड्स,
4: वो तो
3: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी।
4: नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
3: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?

0: एफएम एजे 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन दिँदै हुनुहुन्छ हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: वो तो
2: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
2: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

0: Weekend Classic Radio Show.
1: नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड क्लासिक में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी जबरदस्त गाने हैं, जबरदस्त किस्से हैं। ये जो बंबई नगरिया है ना, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री दरअसल बंबई नगरिया में ही पली बड़ी है, आगे बढ़ी है। तो क्या क्या दुर्घटनाएं, क्या क्या अच्छी घटनाएं घटी हैं वो मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले कल्याण जी, आनंद जी, अनजान, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन कुछ कहना चाहते हैं डॉन पिक्चर से, इसे सुनते हैं और फिर आपको बताऊंगा कि रफ़ी साहब को हम वाकई फरिश्ता सिफत इंसान कहते हैं तो क्यों कहते हैं। एक बड़ी अजीब घटना घटी थी जिसने इस बात को साबित कर दिया कि उनसे बढ़कर कोई नहीं साहब। सुनाता हूँ कि सभी, लेकिन अभी यह बंबई नगरिया, तू देख बबुआ।

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। याने याने याने प्यार।

0: थोड़ा सा यानी प्यार हो गया।
1: दिस इज वीकेंड क्लासिक, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ये आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, और अभी जरा चलेंगे उस दौर में जहां पर एक बेहतरीन किस्सा हमारा इंतजार कर रहा है। रफी साहब, मोहम्मद रफी, द ग्रेट मोहम्मद रफी, उन्हें हम फरिश्ता सिफत इंसान क्यों कहते हैं? पता क्या हुआ, एक बार इन्हें बैडमिंटन खेलने का शौक था, तो ये बैडमिंटन खेलने जाते थे हर सुबह सुबह। एक मरतबा ये वापस आ रहे थे, इनके साथी भी इनके साथ थे। एक आदमी इनके जान पहचान का दूर से भागा भागा आया और कहने लगा, रफी साहब जरा कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। रफी साहब ने अपनी जेब टटोली और जितने पैसे थे निकाले और उस लड़के को दे दिए। तो रफी साहब का जो साथी था ना, जो बैडमिंटन खेल रहा था इनके साथ, उसने कहा कि कमाल करते हैं रफी साहब, पैसे गिन तो लेते हैं आप, बिना गिने दे दिया आपने, कमाल करते हैं आप। तो रफी साहब ने कहा, कमाल तो आप करते हैं मियाँ, जब ऊपर वाला मुझे बिना गिने पैसे देता है तो मैं कैसे किसी ज़रूरतमंद को गिन के पैसे दे सकता हूँ, जो था उस वक्त दे दिया। अब ये बात रफ़ी साहब ही कह सकते थे कि जिसे कछूना चाहिए वो सहान के साथ कुछ चाहिए नहीं था, बस कला से प्रेम था, काम कर रहे थे, ज़रूरतमंद तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करते थे और परिवार की देख रहे, इसलिए उन्हें हम हमेशा फरिश्ता सिफत इंसान ही कहते रहे और कहते रहेंगे। अब जब इतनी सारी बातें गई हैं, एक गाना भी सुनते हैं ना फिल्म शागिर्द से, रफ़ी मियाँ की आवाज़ में, बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे ना बनो, सिर्फ वीकेंड क्लासिक।

ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किप

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गया।

0: तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों तो मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम।
1: वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें।
2: You are listening to Weekend Classic.

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: पिक्चर का नाम है दिल्ली का ठग, यह वीकेंड क्लासिक। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। और देखिए क्या हुआ, शम्मी कपूर साहब को एक बड़ा अच्छा स्कूल छोड़ना पड़ा। इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने शरारत की थी, इसलिए क्योंकि उनके बड़े भाई राज कपूर ने कहा चल भाई स्कूल छोड़ दे। क्या हुआ था पूरा मामला सुनाता हूँ। हुआ यूँ कि भाई शम्मी कपूर साहब के परिवार में सभी लोग एक्टर्स, पृथ्वीराज कपूर खुद थिएटर के जबरदस्त एक्टर, सिनेमा के तगड़े एक्टर, तो हमेशा वो क्या करते थे अपने परिवार के बच्चों को किसी न किसी नाटक में इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब जो चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार था वो शम्मी कपूर निभा रहे थे। अब नाटक खत्म होता था रात को, देर रात को, सुबह नींद खुलती नहीं थी, आंखें सूजी सूजी रहती थी। शम्मी कपूर की टीचर ने कहा कि जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। अब पापा जी पृथ्वीराज कपूर के पास टाइम नहीं था, बड़े भाई राज कपूर पहुंच गए जैसा कि अक्सर होता है। राज कपूर साहब ने कहा हाँ जी टीचर क्या हुआ, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका भाई जो है उसकी आंखें सूजी रहती हैं, नींद पूरी नहीं होती उसे, क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, वो नाटक करते हैं तो इस वजह से होता। तो टीचर ने कहा इसको बोलो कि या तो नाटक अटेंड करे या फिर स्कूल अटेंड करे, ये नाटक वाटक करता है पढ़ाई क्या करेगा, नाटक अटेंड करता है। थोड़ा डांट दिया। राज कपूर साहब को गुस्सा आया कि वो स्कूल जहाँ पे हमारी रोजी रोटी की इज्जत नहीं होती वहाँ पे मेरा छोटा भाई कैसे पढ़ सकता है। राज साहब ने कहा शम्मी बस्ता फाड़ लाई, मतलब बैग उठा ले और चल। स्कूल छुड़वा दिया और दूसरे स्कूल में जाके फिर एडमिशन कराया। जिस परिवार में इतना कमिटमेंट हो उस परिवार के लोग तो सुपरस्टार बने ही साहब। अब शमी साहब की बात हुई है, एक गाना सुनते हैं। गाना ज़रा जंगली बनेगा है, अब इन्हें कोई जंगली कहे तो क्या फ़र्क पड़ता है।

राम लखन से, माय नेम इज लखन, सुनाई दिया। आई एम क्वाइट श्योर आप भी थोड़ा सा मतलब तुम क्या आपने भी लगा लिए होंगे, गाना ही ऐसा है यार, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं इस वक्त आप। लेकिन अभी जरा चलते हैं उस जमाने में जहां पर एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरे सामने आता है। हुआ यूं कि किशोर कुमार ने नखरे दिखाए, पंचमदा फंस गए, उन्हें बचाने के लिए महमूद साहब को कूदना पड़ा। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, हुआ यूं कि बड़ा अच्छा गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आशा भोसले जी वहाँ पहुँच गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, पर किशोरदा नदारद उनको लोग फ़ोन कर रहे हैं, उस जमाने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, तो घर पे फ़ोन कर रहे हैं, स्टूडियो में फ़ोन कर रहे हैं, पता चल रहा जी अभी आ रहे हैं, अब आएंगे। इतने में लोगों ने कहा कि यार महमूद तू क्यों इंतज़ार कर रहा किशोर कुमार का, ये गाना तो वैसे भी कॉमेडी गाना है, कॉमिक गाना है ये गाना, तो तू ही गा लेना। कहते मैं गा लूँ? कहते हाँ गा ले। बस जी उन्होंने गा दिया वो गाना, वाकई वो गाना हिट हो गया। महमूद साहब की बेसुरी आवाज़ में भी वो गाना बड़ा सुर में सुनाई देता है, क्योंकि उसमें जो अंदाज़ है, बयां है, वो बड़ा हंसाता है आपको। फिल्म कौन सी है? दो फूल। गाना कौन सा मैं बताऊंगा नहीं, आप सुन लो ना यार, आ गया गाना, सुनिए सुनिए, गौरव के साथ हैं आप।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।